अपने दूसरी चिट्ठी लिखी, तेरा मुख सुहावा जी, सहज धुन बाणी, चिर हुआ देखे सारंग पानी, तन सो देश, हे गुरु पिता आपदा सुंदर स्वरूप मैं कदी अखां तो ओले नहीं सी वेख सकदा, पर हुण तक कितनी मुदत बीत गई, तेरा दीदार नहीं होया, तन सो देश।

भावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो ए अखर लिख के उसे शेख नू बुलाया गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई गुरु के लाल अगलिया चिट्ठिया तो तू प्रिथिया जी नू दित्तिया पर याद रखी ए ना उसनू देवी ए सतगुरां दे चरणां विच जाके रखी क्योंकि आपनू शक हो गया सी कि ए पत्र कामा प्रिथी चंद ने हजूर नू नहीं पहुंचेंगे क्यों कह के सिख नू तागीद करके तोरिया सिख आया उसने देखिया प्रिथी चंद सेवा करवा रहा है उसने वो रस्ता ही छड़ दिता उस पासे दी जिथे गुरु जी बैठे सन उसे जाके पहुंचिया मत्था टेके करीब निवाज में अर्जुन देव जी दी पत्रिका लै आया मत्था टेक के बैठ गया जदों पत्रिका गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने पढ़ी अवस्था देख के इतना प्यार देख के आपदा मन द्रव गया भावे अंतर जामी सन सब कुछ जान दे सन केड़ा भुले सन लेकिन ए बाज किरिया देख के आप जी दा चित अति द्रवीभूत होया उस मौके ही बाबा बुढ़ा आदि पंज मुखी सिखां नू बुलाया हुक्म होया जाओ लाहौर अर्जन देव नू लै आओ ओ सानू मिलन वास्ते बहुत व्याकुल हन बड़े बेबल हन ए सिख जांदे हन लाहौर पहुंचदे हन श्री अर्जन देव जी नू कहा आप जी नू हजूर श्री रामदास सच्चे पातशाह जी ने याद की अज ए पत्रिका तुहाडी साहिब जी नू पहुंची जदों अर्जन देव जी नू लै के अमृतसर पहुंचे दरबार विच हजूर सुशोभित सन चरणा विच हाजिर हो गए हजूर दा रूहानी दरबार लग्या है बड़े कीमती शामियाने लगे हन कीमती फर्श विछे होए हन बहुत सारी संगत हजूरी विच बैठी हुई हजूर दे इउं दर्शन कर रही है जिवें करोड़ां चकोर चंद्रमा वल एक टक लगा के देखदे हन गर्दन भावें मुरड़ जाए दीदार करनू नहीं हटदे कन्ना नाल गुरु की बाणी सुनदे हन जबान करके बाणी दा उचारण करदे हन निरंतर सिमरन करन वाले प्रेमी इथे जुड़े बैठे हन ऐसा सिमरन ऐसी ब्रह्म ज्ञानियां दी सभा विच जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह पहुंचे तां अपने गुरु पिता दे चरणां ते जाके मस्तक रख दिता नैणा दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते अंतर गुर आराधना देवा जप गुर नाउ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाउ सतगुर सेती रत्या दरगह पाईए ठाउ ऐसा अलोकित सचखंड दा नक्शा ते इधर एडी बेबलता के हजूर ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू प्यार दिता ते पुछन लगे अर्जन देव आ जेड़ी तू चिट्ठी लिखी है एदे उपर तीसरा अंग पाया होया है इस तो पहला भी कोई चिट्ठियां लिखियां हो क्या गरीब निवास सच्चे पातशाह दो चिट्ठियां पहले लिखियां सन ओ आप जी नू पहुंचिया नहीं प्रिथी नू बुलाया महाराज मैनू तो कोई सिख ने चिट्ठी नहीं दिती धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे भाई इथे गुरु दरबार विच मुकरना ठीक नहीं सच सच कह दे ते जे तू सच नहीं कहेगा तो असी जिथे पईयां हन सेवक नू भेज के तेरे घरों मंगवा लवांगे उचारण करो श्री वाहिगुरु सेवादार भेजिया जेड़ी थां साहिब जी ने दसी सी उथो जाके चिट्ठियां ले आया धन गुरु रामदास पातशाह कहन लगे लो भाई हुण जेड़ा चौथी चिट्ठी उचारण करेगा ना गद्दी दा हकदार ओ होवेगा धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने चरणा ते सिर रख्या हुआ

गौड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विलक दी आत्मा कृपा दी जांचना कर दी है, त्यागते दी खोज कर दी है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर, पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोरी है, बाही जना दी पकड़ी है, सिर दी जय बाही ना छोटी है। असि जकारा लावांगे, तुसी सारे ने उच्ची वां करनी है, सच्चे पातशाह साडी वां।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिया बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

परमेश्वर सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाहां देसा जिस पास बैठे हैं सोइए सबना दा विसा जिद कोल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे सच्चे कोल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे इस करके दोस्ती करनी है कच्चे दी ना करो पक्के दी करो ते सच्चे दी करो ताकि आप भी सच्चे

शहर आके लंगर छक गए पर एक आदमी बड़ा हंकारी जापदे ओ लंगर छकन वास्ते नहीं।

भाई साहब कहन लगे मेनू स्वर्ग की लोड़ नहीं, फिर बुआ बंद कर ले। चेले वापस आए, जोगी कहन लगा एक बारी फिर जाओ, तिलकू नु आखो

एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगदा जो कि आसन ला के बह गया रिधियां सिधियां प्राप्त सन उन रिधियां सिधियां दे

पर पाई दिल को उन्हों का मन गुरु नाल जुड़े है ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिया चीजा लागे नहीं आंदी। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने पाए तिलकू बुआ कोल लंगर खा नहीं तो तेन मार देंगे। हुण जिस गुरु की ओट पाए तिलकू ने ली ओ गुरु पाए तिलकू की रखिया कर रहे है उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जेड़ी चुक के पिछा सुट दिंदी है।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नूं ठुकरा दिता। उस गुरु दे मैनूं भी दर्शन करा, मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं उते सारियां दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहिब।

इस जोगी ने पाए दिल को दिनाल पाई, पाए दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां उसे लग गई है। हुण पाए दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाए दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सब बन गया दोस्ती करनी उन्हां नाल करो।

रंग बदली हो गया। जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी, बड़े गुण दसे ने अपने गुरु के, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

चाली पंताली साल का गभरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिद्धियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चलिया नाल आए लोगों ने समझाया अद तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा

गढ़ शंकर तो आ रही है, वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकु समेत कनाथ के परले पास बैठा दियो, दूसरे पास साडा आसन ला दियो। गढ़ शंकर तो जिन्ने भी लोग आ रहे ने कोई भी साडे मथे ना लगे, श्यामा ना सिखाने ला दिता, विष्कार एक कनात ला दी, जिन्ने भी लोग गढ़ शंकर तो

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलाह नूं कहण लगे, बचण दी कोई उम्मीद है? तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पई। इस तरह लगदा है हुण डुबी कि हुण डुबी। मलाह कहण लगा, जे कोई आदमी अपनी बलि देवे तां ही तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखण लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन,

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दियो। जदों सारे मेरे वल देखन लग पए ते मैं समझ गया कि इन्हां लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल होई, सारे मेरे दुआले हो गए।

संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनूं चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा ओ कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदों इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

जोगी वाल मेर की निगाह नाल देखिया रिधियां सिद्धियां को उत्ते करके गुरसिख बना दिता। भाई तिलकू वाल होए साहब जी, भाई तिलकू नु फड़ के अपने गल दे नाल ला लिया ते कहन लगे, भाई तिलकू तेरे वर्ग सिखां वास्ते ही ता बाणी कहंदी है, बिना गुरसिखां को हों वारिया, जो बहंदिया उठदिया हर नाम त्यागे। तेरे वर्ग सिखां तो कुर्बान हां, जेड़े बहंदिया उठदिया नाम जपदे ने ते जपांदे ने। जिनी सचड़ा सच सलाहा हों तिन लागों पाए।

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर था रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहने सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत दाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जति जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगति की, सिद्ध समाद समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ गए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणों नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, ते तू ही उस लैण ते ना तुरी, तू ओ आरती करनी है जेड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो पाई। आ भाई अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठाडा बरमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती की समझ कोई विरला ही जान सकता है, किसी विरले की ही समझ यह गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा, कोई इस गल नू बुझ सकता है। हर किसी के बस का रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सां, तीन चार चीजां दा दीवा बालन लई तीन चीजां दी लोड़ हुंदी है, तेल दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिहड़ा तेल पाया ना इत्थे, तत दा भाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम की आबादी, कहते ने जिहड़ी विच बत्ती है ना, वह मैं नाम दी पाई है, ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना, हुण इत्थे दीपक आटे का नहीं है, मिट्टी का नहीं है। कईयां ने अपनी समर्था मुताबक स्टील का, कोई चांदी का, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने। पर भगत कबीर जी कहंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया है, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तप्त तेल नाम की या बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं इस तन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालिक, हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ये जोत कदों जगी? जदों असी जगत तारन हार दे नाल जुड़ गए, क्योंकि जब तक परमात्मा नाल जुड़िया ना जाए, जोत नहीं जगदी। आ तुसी वेखदे हो, कई बार तीन चीजा होण, दीवा बत्ती तेल, जब तक बालन वाला ना ना होवे, दीवा नहीं बनता।
दीवा अपने आप कदी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मेलना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना बत्ती कढ़ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा हो दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दईए दीवा ना हो दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होण दीवा भी होवे विच बत्ती भी होवे तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बनता। बालण वाला चाहिदा है। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा तां बलना है ए जोत ने उजियारा तां करना है जद तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा ते ए दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई बिरला इस गल नूं बुझदा है कि यह जिहड़ी जोत है मालक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पाणी पंचे शब्द अनाहत वाजे ए अनहद वाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार वज रहे हैं क्योंकि मालिक तेरी कृपा होगी। पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग बाणी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बज गया। अनहद यह जिहड़ा अनहद नाद है यह अंदर वजदा है। ते भगत कबीर जी कहते ने मालक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनाहत वाजे एक रस एक तार वज रहे ने। ते ए पंच वाजे केड़े ने पंच साज केड़े ने तंती साज ते साज संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ धातु दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ फूक मारन वाले साज ये पंच प्रकार की साज पंचे शब्द जिन्हों कहते पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती का मन बनिया किसनू संपूर्णता विच कीता जाए फिर तन्ना जी का भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल की धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहते ने इस आरती नू करन वास्ते चार चीजा की लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिन्हों जलाया जाता है ये चार चीजा जिन कहते ने कठिया हो जान फिर यह दीवा बाल के आरती की जाती है। लेकिन यह जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार होंदी है उहदा कुछ जिक्र मैं अज पढ़ रहा सां इस प्रकार मिलिया। कहिंदे ने चार वरी यह जिहड़ा थाल है ना चरणा ते कमाया जाता है चार वरी ते दो वरी यह नाभी तक इस थाल नूं कमाया जाता है ते उपरंत एक बार मुंह ते मुख ते कमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार कमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे ने इह नहीं कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुरु कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझे ही ना हमेशा जगदा रहे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालिक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालिक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोल कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोल कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
क्योंकि अगे लफज आरती चल रहा है। यह आरता क्यों है? यह ना समझ लेना एक काव रस है। जिवें कवि कोई काव लिखता होवे ना, उन्हें अपने फिक्रे नूं लवाना हुंदा है। हुण अगे लफज की है? गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। क्योंकि लफज तां पूरा हुंदा है। ए दास तन्ने वालों हे मालक तेरे अगे बेनती है। गोपाल तेरा आरता किस लई? जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। हुण एक गल मैं तुहाडे समक्ष ए रखना चाहना, भगत तन्ना जी ने इत्थे विश्वास दस्सिया है भई जेड़े तेरे परमात्मा भगती करदे ने, मैनू यकीन है, मैनू भरोसा है, मैनू अकीदा है, तेरे ते फेत है, तू उहनां दे कारज आप सवारना है। तिनके काज सवारता। हुण कहिंदे ने मेरियां मंगां की ने? सतसंग ध्यान देना। दाल सीता मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। हे परमात्मा अकाल पुरख, मैं तेरे दर तो आरता करके ए दात मंगदा हां, दाल सीधा मांगो कियो। दाल तुसी सारे जानदे हो, जिन्हों दाल ते रोटी दसन सा दुनिया का सब तो वड्डा है। कहिंदे ने दाल ते सीधा कहिंदे ने आटे नूं। दाल सीधा मांगो कियो, हे परमात्मा घ्यो भी दे। हुण ए जे तीन चीजा तू मैनू दे दे, हमरा खुशी करे नित जीओ, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। साध संगत ए ते बिल्कुल सियानी गल है। वह जिदे घर खान नू ना होवे, उहनू भगती किथे सुझदी है? उहदा मन कुड़दा रहिंदा है। कहिंदा हे परमात्मा एवें संसार विच भेज दिता ही, खान नू ते दिता कुछ नहीं। जे कुछ खान नू देवे तो तेरी भगती करा, हुण खान नू ते लभदा नहीं, तेरी भगती की करा? इसलिए भगत तन्ना जी कहिंदे ने हे मालक तेरी भगती भी तां होवेगी, मैनू ए चीजा दे, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे, मेरा मन बड़ी खुशी नाल तेरी भगती करेगा। हुण भगत जी कहिंदे ने इत्थे ही बस नहीं, हे परमात्मा कुछ मंगा होर भी ने। पनिया छात्र निका अनाज मंगो सद सीका। पनिया दा पाव है पैर। हे मेरे परमात्मा मैनू पैरां दी जुत्ती बड़ी आला चाहीदी है। पनिया छादर निका, हुण छादर कहिंदे ने तन दे कपड़िआं नूं। पैरां दी जुत्ती अच्छी होवे, तन ते कपड़ा अच्छा होवे, सिर ते पग सोहणी होवे, ते वेखण वाला भी कहिंदा कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी विच आया है। क्योंकि अड दी दुनिया दी निगाह सिर तो लैके पैरां तक जांदी है। ते भगत कहिंदा हे परमात्मा जिहड़ा मैनू वेखे वह मैनू वेखदिआं तेनू याद करे, मैनू वेखदिआं तेनू याद करे। जे परमात्मा दा भगत ऐसा है ते परमात्मा की पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका। पैरां दी जुत्थी अच्छी होवे, तन दे कपड़े अच्छे होण, ते अनाज सोहणी धरती वाई दा मैनू चाहिदा है। अनाज भी इहो जिहा ना होवे, अच्छी धरती वाई दा। अनाज मंगो सत सीका। फिर कहिंदे ने गौ पैंस मंगो लावेरी इक ता जुन तुरी चंगेरी। हे मेरे मालक इक गऊ चाहीदी है, इक पैंस चाहीदी। पर सजल सुरी सजल सुई हुई कहिंदे ने इहो जी मैनू दे देवी गऊ पैंस मंगो लवेरी इक ताजन तुरी चंगेरी। तुरी कहिंदे ने अरबी घोड़ी। तेरे भगत नूं घोड़ी भी चाहीदी है असवारी वास्ते। बस हुण इंज समझ लो, उस वेले घोड़ियां सन, इस वेले आ मोटरां कारां। कितने कितनियां महंगियां, कितने कितने नाम ने उन्हां दे, जिहड़े गिणे नहीं जांदे। पर उस वक्त अरबी घोड़ी सब तो आला गिणी जांदी सी। गऊ पैस मंगो लवेरी इक ताजन तुरी चंगेरी। अंत विच कहिंदे ने हे परमात्मा आ डिमांड ध्यान नाल सुनी। कर की गेहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी।
ਭਗਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗਾ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਕੀ ਗਿਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਦੇਵੇ ਮੰਗੀ, ਤੰਨੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੜਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋਰਠ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੇ ਯੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਲਾ ਫਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਰੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੜ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਰਠ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਯੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ, ਫੜ ਮਾਲਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਹਉ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰੂਦ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਉ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਲ ਪਈ ਬੂਹਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਆਪਣ ਤੇ ਹੋ ਤੋ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਮਾਧੋ ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤੋ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ,

परमेश्वर कहायो पाठ अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक

सामने चलिया जा। कोई कहंदे मेरे पीछे पीछे तुरिया, पर तन है गुरु नानक। नजारा तको जिन्हें दर्शन करने ने वो घोड़े ते सवार है, ते जिदे दर्शन करने ने वो घोड़े दी वाग फड़ के अगे अगे तुरिया जा रहे है। जब धर्मशाला आई गुरु नानक साहब ने कहा, पुरखा अपना घोड़ा इथे बन दे, ए हुई धर्मशाला है, ते अंदर चला आवी। इन्नी गल कह के धन गुरु नानक साहब दूसरे दरवाजे विच होके अपने सिंघासन ते जाके बैठ गए। भाई लहणे ने घोड़ा एक पासे बन दिता और जदों धर्मशाला दे अंदर दाखिल होए, गुरु नानक दे दर्शन करन वास्ते जद सामने सिंघासन वाल निगाह गई, हैरान हो गए कि जेड़े मेरे घोड़े दी वाग फड़ के मैनू इत्थों तक लै के आए उहो सिंघासन ते बैठ के इहो गुरु नानक है। कहन लगे, मना जे इहो गुरु नानक है तां इहदे वर्गा फिर होर कोई नहीं हो सकदा, और इहो जिहा गुरु किधरे मिलना भी नहीं। भाई लहणा अगां होए गुरु नानक दे चरणां ते अपना सिर रख दिता। कहन लगे, बाबा अज मन दी भटकना मुक गई, तेरा दर मिल गया, हुण किसे होर दर ते जाण दी मैनू लोड़ नहीं, क्योंकि तेरे वर्गा ते तू ही हो सकदा, होर कोई

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दात जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी।

अमृत शतर गुरु राम में दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

0: दानी धानी तुम दानी तालर तुम फिरना तुम फिरना तदर दानी दानी दानी तर तुम
1: बागर दी बिकते बाग बागर दी तुम फिरना बागर दी बिकते बाग बागर दी तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना